हजुर, निश्चय नै यो बिएबस गोर्खा रेडियो साप्ताहिक प्रस्तुति टिटी टिपन टापन सुनिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम चाहिँ प्रत्येक बुधबार बेलुकी 6 बजेर 28 मिनट जाँदा